उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो

पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है, ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले।

फाम है, सच्चा बदनाम है, झूठा गुलफाम है, सच्चा बदनाम है। बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले का हर काम है। ये बॉम्बे शहर का बड़ा नाम है, पर गड़बड़ घोटाले का हर

को बोले बटाटा, यहाँ नमस्ते को कहते हैं टाटा, यहाँ अमरूद पेरू और अंडा है पैदा, यहाँ पर हुए हैं नए नाम पैदा, ये जिसको बुलाएं करें

0: बस बस बस सा पे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है?
2: गा।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो
0: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है जब हम पागल पागल फिरते थे। सोनू निगम एंड सरिका कपूर से आप सुने, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है। तुमसे अच्छा कौन है, और ये उजाला रेडियो है।

जिंदगी बन गए हो तुम। फिल्म कसूर और गीत के गाने वाले अलका याग्निक और उदित नारायण जी।

हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। वादा रहा सनम, फिल्म खिलाड़ी और गाने वाले अभिजीत एंड अलका जी।

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं हमारे प्यारे सुनबलू आप को मेरा प्यार भरा नमस्कार राम राम नमस्ते और आदाब उजाला रेडियो का दफ्तर का फोन का नंबर है 9300907 पर आप लोग तार कर सके हैं हमारा दफ्तर खुला रहता है सोमवार से लेकर शनिवार तक दिन में सुबह से 10 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक फन मंडे तो मैं सैटरडे फन तीन से मॉर्निंग से 3 बजे मिडिल हमारा वेबसाइट है www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिल सकेगा

मैं हूं शुभांश। हमारे प्यारे सुनने वालों, और जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है वहां तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से, दुलार से, दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं। वेलकम वेलकम वेलकम, चाहे जहां पर आप लोग प्रोग्राम को सुनते होंगे।

Valjar, Austranse, Alkajagniken, Udit Naranjike, Valsmeganaj, Pregamme, Abiap Luxundrahitem, Juar, Ujala, Radio Ka, Pregam, Juap Luxundrahem. चलिए इस बार हमारे प्यारे सुनवलू मनहर उदास एंड अलका याग्निजी की आवाज में खूबसूरत सा गीत जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे

0: वेल यार, बोले मौसम की तरह तुम भी तो ना बदल जाओगे। इस तरह से मनहर उदास और अलका याग्निक जी के आवाज में ये खूबसूरत सा गीत प्रोग्राम में आप लोग सुने और प्यार और दुलार के साथ।
1: इश्क छुपता नहीं

वेल यार, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूं मैं जमाने से। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने अभिजीत की आवाज में, यू आर उजाला रेडियो है।

तुमसे ना कुछ कह पाए। आओ इस तरह से हरिहरन एंड चित्रा के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, बहुत ही प्यार, बहुत ही लवली सॉन्ग जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने।

0: आबीजा आबीजा ऐ सुबह बोले आबीजा। आयुष तरह से ये लकी अली एंड सुनिधि जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, यू आर उजाला रेडियो है।
1: बचिए पूरे आठ आने।
0: अच्छा
1: धुन सुनाओ ना।
2: अरे नहीं

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

वेल यार जिया डोले पियो बोले इस तरह से सोनू निगम एन श्रिया जी के बाद उसमें गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने हमारे प्यार सुनने वालों उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं

Val Valyar Tere Vansate Mera Ishq Sufiyana, इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे। हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है 9 तखफी 09 07 पर आप लोग तार कर सके हैं।

Galyar kap tu je zindagi se jurliya ajnabi kuch pata na chala. KK and Shriya ji ke awaaz mein gana jo program mein bhi aap log sunein. चलिए इस बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, मैंने दिल से कहा यार,

कितनी बेचैन होके हम तुमसे मिले। फिल्म कसूर अलका याग्निक एंड उदित नारायण, इन दोनों से आप सुने और ये उजाला रेडियो है।

और रब आई ना जुदाई, फिल्म जुदाई का टाइटल सॉन्ग आप सुने अलका अलका याग्निक, हरी हरन और जसपिंदर नीरू।

हे सुन वालो, मैं हूँ आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहाँ प्यार खुशी और मस्ती मिलता है।

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रब्बा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने है तो।
1: Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.

है बिनकोट रावल, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो डीजे आप फरमाइश और उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो और उजाला रेडियो दिस खाई बिनकोट रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है नेम कॉन्टैक्ट कॉप मैट उजाला रेडियो ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो और उजाला रेडियो

0: QR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Er staat 250 kilometer file. Heeft deels te maken met de afgesloten A27... waardoor het onder andere heel druk is op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam die was dicht bij Hoogmade. De weg wordt nu vrijgegeven. Er was daar een politieactie gaande. Je hoeft dus niet meer om te rijden en er komt een beetje beweging in daar. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht is de vertraging 20 minuten. Op de A58 Breda Tilburg bij knooppunt Sint-Annabosch moet je ook rekening houden met een kwartier vertraging. En de N62 Borselen Belgische grens is dicht bij de Westerschelde-tunnel door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio, your radio. Bel met de studio via 020-363-0808.
3: Aap sun rahe hai Ujala Radio.
4: Aziz dosto, Hindustan ki azadi ki salgirah par main aur mere saathi aapko dili mubarakbad pesh karte hain aur jis shauk se aap azadi ka jashn manane yahan aaye hain उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आज़ादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं और उसे फैसले का हक होता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे, मगर मेरे लिए तो वो दो राह भी नहीं, मेरे लिए एक ही रास्ता है, एक ही फैसला, एक ही अंजाम। इसलिए आज इस भरी महफिल के सामने मेरा ये वादा है, या तो वो हाथ जिन्होंने मेरे गले में ये हार डालते हुए मोहब्बत की कस्में खाई थी मुझे दोबारा ये हार पहनाएंगे, या आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात होगी।

0: live vanuit de hoofdstad. Ozana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो.

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादादाग 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। उत्तराखंड से परिवार सुल्तान सिंह जालिम सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए इतवार को 55 साल की आयु में फैफन फैफ्त खियार औत माँ एदित सुल्तान सिंह जालिम सिंह और स्वर्गीय पिता श्री हरमन सुल्तान सिंह के बेटा संद्रा का भाई रुद का सार उत्तराखंड का रहने वाला माइकल सुल्तान सिंह की मृत्यु उत्तराखंड में हो गई है। उत्तराखंड से परिवार सुल्तान सिंह जालिम सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते इतवार को 55 साल के आयु में फैफन फैफ्त खियार औत माँ एदित सुल्तान सिंह जालिम सिंह और स्वर्गीय पिता श्री हरमन सुल्तान सिंह के बेटा संद्रा का भाई रुद का सार उत्तराखंड का रहने वाला माइकल सुल्तान सिंह की मृत्यु उत्तराखंड में हो गई है। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शुक्रवार के दिन में 3 बजे फ्रेदा खानस्तांद द्री उर किए जाएंगे क्रेमाटोरियम दालवैक फ्लोरिडा ड्रीफ नंबर 7 उत्तराखंड ओफर फैक्ट में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार सुल्तान सिंह और परिवार जालिम सिंह के दुख में शामिल है।

आठ बजकर सात मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। आज इस नई महीना का पहला गुरुवार डोंडरहावंत 2 तारीख जुलाई सेवा करने चले आए हैं और वो भी स्टूडियो यूआर का रतनराम से। मैं हूं रतनराम दुलारे पांडे और यहां से रात्रि में 11 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेंगे। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। प्रोग्राम दिल की आवाज खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। द ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स मेरे प्यारे सुनवालों और उनके साथ साथ कुछ दर्द भरे नगमाएं। इन नगमाओं के साथ आपका दिल फिर एक बार बहलाएंगे आपको। तहे दिल से स्वागत है आप सभी का। बहुत ही खूबसूरत दिन है मेरे प्यारे सुनवालों। अभी तक सूरज अपना सूरत दिखा रहे हैं बाहर। अतिसनी मेर सो वर्म अल्स फोर हुई प्रत्यक्ष नाम तुम ही तो आशा करते हैं मेरे प्यारे सुनवालों। आप जहां पर भी हैं, जिस हाल में आप होंगे, आप मगन में होंगे और बेहद खुशी है हम कि आप सभी ने फिर एक बार चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनवालों अवश्य व्हाट्सएप पर मुझसे बातें भी कर सकते हैं। 020-363-0000 020-363-0000 और है आपके कामकाज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते। फरमाइश जरूरी खबरें, मौत की खबरें मेरे प्यारे सुनने वालों, सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक आप दफ्तर को तार कर सकते हैं। मानदक तो तुम्हें साथ रख फनफ तीन यूर्स मोरखन तो तुम्हें इन मिदाख द्रियूर अब 020-409-0807 020-409-0807 या तो लगातार 24/7 मेरे प्यारे सुनने वालों, किसी भी दिन किसी भी वक्त किसी भी पल आप उजाला रेडियो को कांटेक्ट कर सकते हैं। मिल के जरिए आप मिल करें आपके हर एक कामकाज के लिए, आपके हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते info@ujala.nl en ook voor de komende concerten en shows niet naar de studio appen, maar mailen naar info@ujala.nl of anders tijdens kantooruren proberen te bellen. आज का ओपनिंग सिलेक्शन मेरे प्यारे सुनने वालों, एक गीत जो रोमांटिक है, जवानी का गीत है, कॉलेज के नगमा। तू जाने तो कॉलेज के जमाने में आप जवान हैं, जोश है और खुलेआम प्यार करते हैं, किसी से तो नहीं डरते हैं और किसी के बाप से भी नहीं। सही लुधियानवी जी मेरे प्यारे सुनने वालों, सही लुधियानवी जी वन ऑफ माय फेवरेट लिरिक्स सॉन्ग राइटर कवि, इनके लिखे हुए नगमा से आज हम ओपनिंग करेंगे किशोर कुमार की आवाज में मेरे प्यारे सुनने वालों की। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है कोई खता तो नहीं।

0: नहीं।
1: तेरे होंठ मेरे होंठ सिल गए तो क्या हुआ, दिल की तरह अगर ये जिस्म भी मिल गए तो क्या हुआ। मैं भी होशमंद हूँ और तू भी होशमंद है, उस तरह जिएंगे हम जिस तरह भी पसंद है। और रस्म क्या, रिवाज क्या, धर्म क्या, समाज क्या, दुश्मनों का खौफ क्यों और दोस्तों की लाज क्या। ये वो शौक है कि जिसने ये वो शौक है कि जिसे कोई भी बचा नहीं। प्यार कर लिया तो क्या, प्यार है तो खता नहीं। सही लुधियानवी जी हमारे प्रिय, इनका लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग, भरपूर जवानी फुल रोमांटिक सॉन्ग इन्होंने लिखा और किशोर कुमार ने गाकर सुनाए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। कभी कभी फिल्म का नाम, ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सुनने वालों। 17 मिनट गुजर चुके हैं 8 बजकर, फिर एक बार तहदिल से स्वागत करता हूं आप सभी को लाइफ एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से। मैं रतन राम लाड़े पांडे पेश कर रहा हूं फिर एक बार एकदम लाइफ प्रोग्राम दिल की आवाज हियर ऑन यूआर उजाला रेडियो। और प्रोग्राम रात्रि में 11 बजे तक सेवा में पेश किया जाएगा। प्यार भरा गीत, भरपूर जवानी का ये एक्शन पैक सॉन्ग आप सभी ने सुने हैं, लेकिन जवानी में भी लोग प्यार करते हैं। जवानी में ना सिर्फ, लेकिन बुढ़ापे में भी होता है, लेकिन फिर भी दिल भी टूट जा सकता है। और अगर दिल टूट गया तो आप उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग शराब में डूब जाते हैं, देवदास बन जाते हैं और सोचते हैं कि अगर हम शराब पिए तो डर भी चले जाएगा और उनकी याद भी। आई डोंट थिंक सो मेरे प्यारे सुनने वालों। फिलहाल तो खूबसूरत गीत आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ पेश करने जा रहा हूं, शब्बीर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजों में।

लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई, तेरा कोई खताया ना कोई खबर आई, क्या तूने मुझे भुला डाला। अपने इस दीवाने को मुझे पीने का शौक तो नहीं, लेकिन पीता हूं गम भुलाने का। दर्द भरे गीत मेरे प्यारे सुनो, शब्बीर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ नगमा, फ्रॉम द मूवी कुली। और अब इस हद तक किसी से प्यार करें कि आप अपने दिलो जान उन पे निजार कर सकते हैं और उनको ये बयां भी करते हैं कि आपकी खातिर मेरे दिल का जहां है हाजिर। हिमेश रेशमिया समीर का लिखा हुआ गीत। रिमेम्बर दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, और 6 मिनट बाकी है सरे 8 बजकर। दिल की आवाज लाइव फ्रॉम यू आर स्टूडियो रतनाम।

इश्क भी क्या चीज है मेरे प्यारे सुनने वालों, इश्क भी क्या चीज है, इसमें होश रहता नहीं। ये तो है सिलसिला चैन व सुकून का, दिल के जुनून का आवरी। आपकी खातिर मेरे दिल का जहां है हाजिर, अपने ये सारे अरमां कर दूं तुम्हें मैं साहिर। हिमेश रेशमिया जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनवालो समीर, इनके कलम से लिखा हुआ ये खूबसूरत प्यार भरा रॉक सॉन्ग हमने आप तक पेश किया है। फिल्म का नाम भी आपकी खातिर है। उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सुनवालो, और आपको तो मालूम है प्यार बिना ये जिंदगी बेकरार है और बेकार भी है। और यार भी ना, यार नहीं तो प्यार नहीं, यार नहीं तो ये जिंदगी बेकार है, और जब यार ही नहीं तो ये प्यार भी बेकार है। पेश करता हूं गीत, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुहेल कौल जी का गाया हुआ, और गीत जो लिखा गया है समीर के जरिए।

जवानियों के चाड़ पर, देखो ना जाए निकल बेचैनियों की चाहते पहचान मेरी। प्यार बिना जिंदगी बेकार है और यार बिना जिंदगी बेकार है। सुहेल कौल जी की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, समीर का लिखा हुआ गीत आप सभी ने सुने हैं। दिस इज यू आर, मेरे प्यारे सुनने वालों, हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते www.ujala.nl। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनोलो आपको ले चलेंगे एक गीत जो एक हीरा है लेकिन शायद बहुत ही कम चलाया जा रहा है रेडियो के जरिए हमारे ये प्रोग्राम में, तो जरूर से जरूर इन्हें हम पेश करेंगे। एक रोमांटिक छेड़छाड़ सॉन्ग है, महान कवि सॉन्ग राइटर और एक्टर गुलशन बावड़ा जी इनका लिखा हुआ गीत, जो संगीत की देवी लता जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार मिलकर गाएंगे। तुमको मोहब्बत हो गई है हमसे और हमको तो मोहब्बत हो ही गया है तुमसे। पेश करता हूं

दीवाने किस बात का हो बताओ ना, शर्माओ ना, हाय दिल में तुम्हारे समझाओ ना। तो कहता है कि पहले जल्दी जल्दी इन बाहों में आ जाओ, फिर समझा देंगे हम, ऐसे ना घबराओ। लड़कों का ये तो बात है, लड़कियों को सताने का आदत है, और ये आदत बुरी नहीं, क्योंकि लड़कियों को पसंद है कि लड़कों ने छेड़े। अजी छोरो रुसवा तो सभी है जमाने में, कुछ आएगा और कुछ जाएगा भी ये दिल लगाने में। दिल का दिल में ही आना है जाना, ओ जाने जाना। हमको तो मोहब्बत हो गई है तुमसे, और तुम्हें भी मोहब्बत हो गई है हमसे। खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग विद सम छेड़छाड़, संगीत की देवी लता जी की आवाज, और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार, ये गीत जो गुलशन बावरा जी ने लिखा, दोनों ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम हाथ की सफाई। मेरे प्यारे सुनो वालों, हाथ की सफाई। पागलपन छा गया अगर प्यार हो जाए तो इनदात पागलपन छा जाता है, उसी दिन से जब दिल तुम पे आ जाता है। आप उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करेंगे लेकिन आपके दिल नहीं मानेंगे। आप उन्हें किसी भी तरह रोकने की कोशिश करेंगे, वो रुकेगा नहीं अगर प्यार हो जाए तो। विपिन सखदेवा, अनुराधा पौडेल, फाइज अनवर कमाल का गीत इन्होंने लिखा है। मेरे प्यारे सुनो वालों, कमाल का गीत इन्होंने लिखा है, इतनी प्यार इस गीत में है, और ये सब मिलकर गाएंगे। मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं।

यह ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुन वालों, मेरे दिल का पता तुम्हें किसने दिया, क्या तुम भी अकेले थे मेरी तरह, जानम ओ मेरी जानम, मैं अकेला जी रहा था, जीवन बेइरादा था, ना किसी से तो मोहब्बत थी और ना कोई भी वादा था, लेकिन जब से तू मिला तुम्हें किसी ने मेरे घर का पटा दे ही दिया, और हम जो अकेले थे तुम्हें मिल गया। फैज अनवर जी का लिखा हुआ ये प्यार भरा नगमा विपिन सखदेवा और अनुराधा पौडवाल जी की आवाजें। फिल्म का नाम भी है जानम, मेरे प्यारे सुनो वालों, जानम से हमने नगमा आप तक पेश किया है।

इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों। इस गीत के बाद हम बढ़ चलेंगे ब्रेक की ओर, और वो भी 9 बजे का। एक गीत देव खोली जी का लिखा हुआ मेरे प्यारे सुनने वालों। देव खोली जो एक महान कवि भी है, पंजाबी पुटर है, इनके हाथों से बहुत सारे खूबसूरत नगमाएं लिखा गया है, खास करके द 90s में, जो आप भी पसंद करते हैं। उनमें से शायद ये भी एक है, एक नगमा जो द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गाएंगे। गीत चलाने से पहले मेरे प्यारे सुनने वाले, आप सबको भी हम इतला दें कि आने वाले शनिवार 4 तारीख जुलाई को, जो इस महीने नए जो है जुलाई का पहला शनिवार, सेवा करने चले आएंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर 4 तारीख को पेश करेंगे। उसके बाद हम 5 हफ्ते के लिए बेनेकर नीत ऑफ द 7 दख अलीन 7 दख नीत, तो अगस्त में ओम प्रसिद्ध सैन, अगस्त में मेरे प्यारे सुनो वालों 15 तारीख को फिर शनिवार को प्रोग्राम पेश करेंगे। दैट इज प्रसिद्ध दिस इज द वीक 5 हफ्ते 4 जुलाई को हम रहेंगे, एंड ऑन 5 वीक राना नीत, एंड दिस वीक ऑफ द 7 दख 15 तारीख 15 अगस्त को फिर हाजिर रहेंगे। मा वाट बतरेफ द वूंसदाग एंड द डोंडरदाग दम बेनिकर नोख एल्क वीक जुलाई के महीना में तो द 23 से तू जाने दो। पेश करता हूं नगमा नैन कबूतर, नाइटिंगेल आशा जी और कुमार सानू।

गोरी गोरी मुख को चूमे हीरे मोती, ऐसी शरारत कभी हमसे भी होती। और प्यारी प्यारी छवि है अदा भोली बाली, अपना लगाना होठों पे लाली। खोए खोए ये नैना देखे बस मेरा ही सपना, प्यार तो मुबारक मिला है कोई अपना। धीरे से छू लूं मैं गालों को और चूमूं मैं भीगी सी फालों को। मुस्कुराता हुआ लेकिन गुल खिलाता हुआ है ये मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा प्यार। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग और जिसमें कुछ छेड़छाड़ भी था। फारूक कैसर जी का लिखा हुआ गीत, फिल्म का नाम लहू के दो रंग। मेरे प्यारे सुनने वालों, लहू के दो रंग। धीरे धीरे हो रहे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों क्वार्ट ओवर नीह। हाँ जी, 9:15 का वक्त धीरे धीरे हो रहे हैं। दिल की आवाज आप सुन रहे हैं, द ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स। लेकिन अभी कुछ नगमाओं के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों, कुछ दर्द भरे नगमाएं भी शामिल होंगे इस प्रोग्राम में। फारूक कैसर का ये गीत छोड़कर हम बढ़ रहे हैं अगले रोमांटिक सॉन्ग की ओर, जो मिलकर गाएंगे साधना सरगम और एसपी बाला सुब्रमण्यम अपने खूबसूरत आवाजों में। खूबसूरत गीत रोमांटिक, समीर का लिखा हुआ। प्रियतमा ओ मेरी प्रियतमा, मैंने प्रेम किया है जब से, सब भूल गया तब से। पेश करता हूं नगमा, हियर ऑन यू आर।

तो कहीं तेरे बिन चैन नहीं आए, दर्द बिछड़ने का अब सहा नहीं जाए। प्रीतमा ओ मेरी प्रीतमा, साजना ओ मेरी साजना, मैंने प्रेम किया है जब से, सब भूल गया है तब से। रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, साधना सरगम और एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की आवाजें, समीर का लिखा हुआ गीत, दोनों ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम प्रेम कैदी। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों, 7 मिनट बाकी हैं सरे 9 बजने में। सेफ मिनट ऑफ 4 o'clock फन हाल ऑफ 3 लाइफ एंड आर क्यू आर के स्टूडियो रतनाम से दिल की आवाज आप सुन रहे हैं। एक गीत योगेश गौर जी का लिखा हुआ, द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल जी की आवाजें। बन के किताब तेरी, तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, तू जाने तो जब तू पढ़िए बीदी पर या झुलवा में या बांगी पर, और आप डूब जाते हैं, आप डूब जाते हैं, आप सो जाते हैं और आप सपने देखने लगते हैं, फिर वो किताब आपके सीने पर, आपके सीने में से इस तरह से लिपटता रहता है। तो बनके किताब तेरी, तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रहकर मैं तेरी धड़कन गिना करूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 पेश करता हूं प्यार भरा नगमा।

0: 16 का कमाल है और बुरा बड़ा मेरा हाल है, मीठे मीठे सपनों का 16वां ये साल है। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, बन के किताब तेरी तेरे सीने से लिपटा रहूंगा, दिल के करीब रहकर तेरी धड़कन गिना करूंगा। मिलकर खूबसूरत गीत गाए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल जी। योगेश गौर जी का लिखा हुआ नगमा, फिल्म का नाम प्यार भरा दिल। इसी गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों ले चलेंगे आप सभी को एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक छेड़छाड़ सॉन्ग, वे बैक 1972 का एक फिल्म जिसका नाम रास्ते का पत्थर। आनंद बख्शी जी जो एक महान कवि है, जिनकी संगीत अमर है, इनका लिखा हुआ नगमा द हार्ट ऑफ मिलियंस। मायती मुकेश और नाइटिंगेल आशा जी की आवाजें कि मैं हरदम किसी को ढूंढता हूं, मुझे किसी की खोज है। पेश करता हूं खूबसूरत गीत प्यार भरा विद सम छेड़छाड़ हियर ऑन योर दिल की आवाज में।
1: मैं हरदम किसी को ढूंढता हूं, मुझे

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनालो, कोई ऐब मुझ में नहीं ऐ जमाने, मेरे दिल में कोई खराबी नहीं, कदम दगमगाते हैं मस्ती में मेरे, मगर मैं कसम से शराबी नहीं। वो यूं ना सुने तो बनाकर बहाना, ये आवाज देकर पुकारो उसे कि बचा लो मैं तूफान में डूबता हूं, मुझे किसी की खोज है। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनालो, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, और बहुत सारे ऐसे गीत हैं। अपने ही बात करता हूं, मैं खुद के बात करता हूं कि बहुत सारे नगमाएं द हार्ट ऑफ मिलियंस मायते मुकेश जी ने गाए हैं, खास करके लता जी के साथ, और वो सब गाने खूबसूरत है, नटूलक पॉपुलर है। मैं जो गाने इन्होंने नाइटिंगेल आशा जी के साथ गाए हैं, पता नहीं क्यों इन गानों को मैं खुद ज्यादा ही पसंद करते हैं, और उसमें से यकीनन ये भी एक गीत है, फ्रॉम द मूवी रास्ते का पत्थर, और ये प्यार भरा छेड़छाड़ सॉन्ग द ग्रेट आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान में रफी साहब जी के गीत हमने पेश नहीं किया है। चलो एक दर्द भरे गीत, एक शिकवा शिकायत सॉन्ग, मजरू द ग्रेट मजरू सुल्तानपुरी जी, इनकी एक एक अल्फाज, एक एक शब्द जो इन्होंने लिखा, रवि साहब जी मिलकर गाएंगे सुलक्षणा पंडित जी के साथ ये नगमा।

जिसके लिए सबको छोड़ा, उसी ने मेरे दिल को तोड़ा। वो बेवफा किसी और की साजन की सहेली हो गई। और वो कहते हैं कि तुझसे प्यारा कोई जो मिला, छोरा तुझे तो क्यों है गिला। बाप रे दादा, मजरू सुल्तानपुरी जी जो एक कमाल के सॉन्ग राइटर है, कवि है, लिरिक्स से है, और इनके हाथों से बहुत सारे नगमाएं लिखा गया है जो आप यकीनन पसंद करते हैं और शायद भी रोजाना सुनते हैं। इनका लिखा हुआ ये गीत रफी साहब जी, सुनो का महाशय द लेजेंड पटमा श्री मोहम्मद रफी साहब जी और सुलक्षणा पंडित जी की खूबसूरत आवाजों में हमने आप तक ये गीत पेश किया है। फिल्म का नाम साजन की सहेली, साजन की सहेली। हम इस घंटे का आखिरी गीत की ओर बढ़ चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों। मनसी एक न्यू लाइव प्रोग्राम है, तू जाने तो हैप्पी कमनी खैर फसत होता है, होता है। अब देखता हूं कि वो गीत कहां है, किस तरह से हम उन्हें खरब धर सकते हैं। हाँ जी, मिल गया। डट शरीर गीत चल नहीं रहा है, लेकिन मैं इसे चलाऊंगा, चलाऊंगा जरूर, चलाऊंगा जरूर। मेरे प्यारे सुनो, आखिरी इस घंटे का गीत जो हम पेश करने जा रहे हैं, एक पॉपुलर सॉन्ग है, एक नगमा जो समीर जी ने लिखा और जो मनहरो दास और अनुराधा पौडवाल जी मिलकर गाएंगे। एक नगमा जो हम निकाल रहे हैं मूवी सरक, मूवी सरक से गीत निकाल रहा हूं, और ये मूवी सरक का ये नगमा जिसका बोल है, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, पेश करने जाएंगे। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनो वालों ब्रेक होंगे, और वो भी 10 बजे का, और ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर हम जरूर से जरूर मिलेंगे। वना खावा नखनी उर्चे मोयूर मस्तराए, और शायद कुछ पुराने नगमाए भी से

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door विवाह होने वाले हैं, तो शादी होने वाला है। नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl। 15 आवेदन फॉर्म और €100 ऑफ उजाला रेडियो।

निर्मल उदास मेरे प्यारे सिनो वालों, हाय कातिल नजर कर गई वो असर, जाने मन हम तो तुम पर फिदा हो गए, याद आने लगी फिर तो वो शामो सहर, जाने मन हम तो तुम पर फिदा हो गए। महान सॉन्ग राइटर हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ गीत निर्मल उदास जी ने गाकर सुनाए हैं। निर्मल उदास जी इस द यंगस्ट फन तीन मौसम, मनहर उदास, स्वर्गीय पंकज उदास और निर्मल उदास, ये था फ्रॉम द एल्बम फिदा मेरे प्यारे सुनो वालों। और फिदा 20 साल पुराना, नहीं 20 साल नहीं, 13 साल पुराना एल्बम है आतिश फनी से स्नेहता। हाँ जी, 12 मिनट गुजर चुके हैं 10 बजकर मेरे प्यारे सुनो वालों, दिल की आवाज आप सुन रहे हैं लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से। फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी को, मैं हूं रतन रामदुलारे पांडे और बेहद खुशी है हम कि आप सभी ने चून किए हुए हैं। सुशीला चंद्रिका सिंह जी, मालती आइलिन जी, एट हार्लेम एंद्रू जी, हेर एंद्रू जी और सुशीला, सॉरी चित्रा जी, वो तो कल खुद से है, सुशीला चंद्रिका सिंह जी, अयताम सल्फीन मैत मालती सुन रहे हैं प्रोग्राम, आइलिन जी एट हार्लेम, हेर एंद्रू और चित्रा जी एट मार्स ब्रुक, प्रभा जी अयताम सदाम सेंट्रम, मिका जी एट दनाख, आईफी जी एट आमस्टरडम और सतिया जी भी एट आमस्टरडम, तहदिल से आप सभी को हम धन्यवाद कहते हैं आपके ऐप के लिए। एक डट भरे गीत की ओर जो काफी पॉपुलर थे मेरे प्यारे सुन वालों, बहन यार तख्त, एक नगमा जो मिलकर गाएंगे बहरोज छतर जी और विनोद सहगल, खूबसूरत डट भरे अल्फाजे महेंद्र दलवी जी का लिखा हुआ, ये दोनों मिलकर गाएंगे कि दिल बढ़ जानिया अब तो आजा।

किसी गरीब के दिल से ये दिल की ना करो, इतना सितम नहीं अच्छा, मेरी जान खुदा से डरो। नगमा मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ, मेरे प्यारे सुनने वालों, और गीत गाने वाले थे नन अदर देन शैलेंद्र सिंह जी, फिल्म का नाम सितमगढ़, और ये खूबसूरत गीत अफसोस के साथ फिल्म में पिक्चराइज नहीं किया गया, और कारण क्या है मालूम नहीं, मातवासनी थी फिल्म। द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी अब की बार गीत गाएंगे, अनजान साहेब जी का लिखा हुआ, और गीत का बोल मेरे प्यारे सुनने वालों, दिल मेरे तू अकेला था, तू अकेला है और तू अकेला रहेगा शायद। पेश करता हूं मुकेश जी को सेवा में, प्रोग्राम में।

दिल मेरे तू अकेला था और तू अकेला है। द हार्ट ऑफ मिलियंस, मायती मुकेश जी की आवाज। मेरे प्यारे सुनो, फिल्म का नाम सोसाइटी। अगले गीत की ओर आपको ले चलेंगे, एक पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग की ओर आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। दिल की आवाज में राजेंद्र कृष्ण जी, इनका लिखा हुआ गीत पेश करने को हम जा रहे हैं। राजेंद्र कृष्ण जी ने इतनी खूबसूरत नगमाएं लिखे हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, आप यकीन नहीं करेंगे कितनी जादू है इनकी हाथों में। और रफी साहब जी की आवाज में तो क्या कहूं, सुरों का बादशाह, द लेजेंड रफी साहब जी की आवाज। और गीत का बोल हम कुछ नहीं कहेंगे, चलो हम गीत चला रहे हैं, राजेंद्र कृष्ण जी का मिलन रफी साहब जी के साथ।

फरिश्ते भी यहां तो रातों को आकर घूमते होंगे, और जहां रखती है तुम पाओ वो गे, ये पाओ तुम जहां रखते हो वो झूमते होने लगते। जमाने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है, और कली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है। हुआ तुम सा नहीं कोई, सच मानिएगा, और ना कोई तुम सा दूसरा होगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन से जब जमीन पर देखता होगा, यही सोचता होगा तुम्हें देखकर कि ये मेरे जो महबूब है किसने बनाया होगा। ये अपने हाथों को रखकर बालों पर सोचता होगा। कमाल का नगमा राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा, और क्या आवाज। सुरों का बादशाह द लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी। फिल्म का नाम धरती। मेरे प्यारे सुनवालों, हम लता जी और इस अच्छो हाँ जी लता जी और किशोर कुमार एक आनंद बख्शी जी का पॉपुलर सॉन्ग आपको सुनाने जा रहे हैं। उसके बाद में दो पुराने नगमाई। फिलहाल तो ये नगमा फ्रॉम द मूवी रॉकी आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, किशोर कुमार और संगीत की देवी लता जी।

पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहां नींद गई मेरी रातों की। क्या यही प्यार है? हाँ हाँ यही प्यार है। संगीत की देवी लता जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की खूबसूरत आवाजें और प्यार भरे शब्द डगरीत आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ सेवा में पेश किया गया है। फिल्म का नाम रॉकी मेरे प्यारे सुनने वालों। और सब कुछ आप छुपा सकते हैं, लेकिन प्यार छुपाना बहुत मुश्किल है। प्यार जो दिल में जो उतर गए, तो दिल तो है एक चीज जो आपके पूरे बदन, वही तो मोटर है आपके बदन का। अगर वो ही नहीं धड़के तो जिंदगी भी नहीं। तो चोरी चोरी अगर आप प्यार करें, लेकिन वो प्यार आपके दिल में अगर उतर जाए तो उसे छुपाना बहुत मुश्किल है। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत नाइटिंगेल आशा जी और शमशाद बेगम को पेश करता हूं। हीरो ऑन यू आर दिल की आवाज में।

छुप जाए, दिखाई दे छुप जाए, पर प्यार छुपाना बहुत ही मुश्किल है। रूठ के तू राजा मेरी चाहे जहां जाए, मेरे दिल से तो जाना बहुत मुश्किल है। वोट रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुन वालों, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ और जो मिलकर गाए हैं नाइटिंगेल आशा जी और शमशाद बेगम, देवर भाभी फिल्म का नाम। प्रिय सुनने वालों, आखिरी गीत पेश करने को जाएंगे। आप सुन रहे हैं धुन, यही धुन के साथ प्रोग्राम को आराम करते हैं और जब भी दोहराता हूं तो आखिरी गीत पेश करूंगा और उस आखिरी गीत के बाद हम यहां से रुखसत होंगे। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हिरवाल्डो और माखरी जी अर्जवाख दंक्यूली वेल, और मफराव एंड मनेर बिहारी अर्बरेदा भी दंक्यू वेल आप सभी के ऐप के लिए। हम आप सभी से फिर मिलेंगे आने वाले शनिवार रात्रि को 7 से 12 बजे, जबकि हम पेश करेंगे प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। टेक केयर और रिमेंबर, आई लव यू ऑल।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: Jala Radio gaat helemaal los. Los.
1: आरती मन मानती कहना क्यों नहीं मानती पाठशाला में छुट्टी हो गई बस्ता क्यों नहीं बांधती बस्ता क्यों नहीं बांधती बस्ता क्यों